विश्राम मंदिर तया तस्तनातनो तनोर्मदीष्य भक्तिरसामृत सिंधु भवतु सदायं प्रमोदायं भक्तिरसामृत सिंधु चरत परिभूत काल जाल भक्त्यमकरानशीलता मुक्तीनदिकान् नमस्यामि भक्तिरथस्तपस्तुतिरखिलौ भगवन्मङ्गलप्रसङ्गस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहय एतस्य भगवद्

तत्र बुद्धविभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपकेन अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयम् आद्या सामान्य

वैशिष्ट्यं मस्या कथयतुं स्फुटं लक्षणं कियति भक्ति रुत्तमाया सतानुमतं अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मार्दनावृतं